एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल

0: शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वो का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं। ये है विविध भारती। वंदन वार

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस कान का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 बजे सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हास्य नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी, 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत सुनिएगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष, उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे।

शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सेक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। रात 8 बजे हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, HS व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश। और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आपको बता दें, सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरूह की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाग्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है।

क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो? लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतन कुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोष में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतन कुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चिट्टस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग कतन कुतूहलम में मुत्तैया भागवतर की एक रचना।

राग कतन कुतूहलम में सबसे ज्यादा मशहूर एक कीर्तनम है त्यागराज रचित, जो है रघुवंश सुधाम बुधि, जिसकी रचना पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की। तो उसका भी एक छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: अभी आप सुन रही थी जल तरंग पर राग कदन कुतूहलम। कलाकार थे अन्यम पट्टी एस गणेशन और एस दंडपानी। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

अंदाज फिल्म का यह गीत था, संगीतकार थे नौशाद, लता मंगेशकर की आवाज थी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

आर पार फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर की तर्ज थी और गीता रॉय की आवाज थी। आज है मजरूह सुल्तानपुरी की याद का दिन और आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर।

परी फिल्म का ये गीत आपने सुना और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें। संगीत एस डी बर्मन का।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं APJ अब्दुल कलाम के इस सुविचार से। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आज ही के दिन इतिहास में घटित हुए। इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को आज ही के दिन 2003 में

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। भारतीय थल सेना के जाबाजों में से एक सुधीर कुमार वालिया का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी का निधन आज ही के दिन 2000 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस, इनका निधन आज ही के दिन 1543 में हुआ। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुख करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। गर्मी से झुलस रहा रोहतास व कैमूर, दोपहर में थम रही रफ्तार। हीट वेव की मार रोहतास में 44.77 डिग्री व कैमूर में 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। अभी राहत नहीं, कैमूर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। जिले में लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष हीट वेव वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें कुल 33 बेड, 6 एसी और 18 कूलर की व्यवस्था है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिले में लू से ग्रसित मरीजों की संख्या 0 है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओआरएस पैकेट और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। विभिन्न नगर निकायों में कुल 136 प्याऊ केंद्रों की व्यवस्था की गई है। डालमिया नगर में बढ़ती तपीश को देखते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा दिए गए विद्यालय बंद करने के आदेश को नहीं मानने वालों के विरुद्ध शनिवार को कार्रवाई की गई। बताते चले कि डीएम का आदेश न मानने वालों पर शनिवार को दो निजी विद्यालयों को बीईओ ने बंद कर कार्रवाई के लिए डीईओ को पत्र लिखकर अनुशंसा की है।

जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी अभिभावकों एवं आमजनों से अपील की गई है कि वे अपने 14 वर्ष की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर HPV का टीका अवश्य दिलवाएं। यह टीका पूर्णतः सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है।

कैमूर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर डीएम कैमूर नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सभी बिंदुओं पर हुई विस्तृत चर्चा हुई। बता दें कि आगामी ईद उल जोहा बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्द एवं भाईचारे के वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति बैठक में पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण आपसी सौहार्द बनाए रखने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी साफ सफाई पेयजल विद्युत आपूर्ति यातायात व्यवस्था एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

कैमूर में नीलाम पत्र वादों में 5,279 ऋणधारकों के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी किया गया है। बता दें कि इन मामलों में कार्रवाई के लिए जिले के सभी थानाध्यक्षों के पास भेजा गया है। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि निर्गत बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे। भभुआ में मंडल कारा में बंद कैदियों और समसीमित बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात को सुगम और सरल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि मंडल कारा भभुआ में प्रशासन ने हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक स्थान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म दंगल से।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का होगा पूर्ण उपयोग, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर अब पैरेलल टैक्सी ट्रैक का पूरा उपयोग संभव हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट के पास स्थित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 1.85 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस भूमि का उपयोग एयरपोर्ट से जुड़े जरूरी इक्विपमेंट और सेफ्टी संसाधनों को शिफ्ट करने में किया जाएगा। इससे एयरपोर्ट के परिचालन में सुधार आएगा और विमानों की आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, नीट परीक्षार्थियों का सरकारी बसों में आवागमन निशुल्क। नीट में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी सरकारी बसों में उनका आवागमन निशुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी। सम्राट ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा को ले अपनी शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि नीट का आयोजन 21 जून को होना है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा स्टेडियम में किया बिहार एआई समिट 2026 का शुभारंभ, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार एआई हब बनेगा, इसके लिए राज्य सरकार जल्द एआई पॉलिसी लाएगी। सभी विभाग एआई का अधिक से अधिक उपयोग करें, नौजवान पीढ़ी बिहार को एआई हब बनाने में अपना सुझाव और योगदान दे। एआई के माध्यम से बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। समाज का उत्थान तभी होगा जब बच्चे युवा आगे बढ़ेंगे। आगे प्रभात खबर की सचित्र सुर्खी है, बक्सर के राम रेखा घाट पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बक्सर के रामरेखा घाट पर प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति की स्थापना होगी। इससे पहले उन्होंने शनिवार को बक्सर नगरी में अवतरित श्री वामन भगवान द्वारा स्थापित शिवलिंग रूप में विद्यमान श्री वामनेश्वर नाथ के अति प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों में फिर इजाफा, इस खबर को सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को 87.91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिनों में ईंधन करीब 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतों में तेजी के चलते ये बढ़ोतरी हुई है। इसी

तरह सीएनजी भी प्रति किलोग्राम 1 रुपए महंगी हो गई है। हाल के दिनों में सीएनजी की कीमत कुल 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल दरका। इस खबर को हिंदुस्तान ने सचित्र प्रकाशित किया है। गोपालगंज में गंडक पर बने जादोपुर मंगलपुर पुल के 5वें पिलर के समीप स्पैन में बड़ी दरार आ गई है। इसके बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। 1.92 किलोमीटर लंबा यह पुल गोपालगंज जिले को पश्चिमी चंपारण से जोड़ता है। इस राह से बेतिया की दूरी करीब 110 किलोमीटर कम हो जाती है और चंपारण के लोगों का यूपी जाना आसान हो जाता है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, ओबरा से जीते सोम प्रकाश से पूर्व विधायक का दर्जा भी छीना। विधानसभा ने 15वीं विधानसभा के सदस्यों की सूची से नाम भी हटाया।

और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। कनाडा से तेल व गैस के साथ निवेश भी लाएगा भारत। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि भारत जल्द ही एक और विकसित देश कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA करने जा रहा है। दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अभी दोनों देशों के बीच $8.4 अरब का व्यापार होता है।

तीन साल में बनेंगे 50 औद्योगिक पार्क। केंद्र सरकार ने पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों से 4 महीने में मांगे आवेदन। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत बनाए जाने हैं कुल 100 पार्क। पार्कों की स्थापना के लिए 33,660 करोड़ रुपए की सहायता देगा केंद्र।

और अब समाचार खेलकूद जगत से। जीत के साथ विदा लेने की कोशिश करेगी मुंबई इंडियंस। मुंबई से भिड़कर प्लेऑफ का टिकट कटाने उतरेगा राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले लीग चरण के अपने अंतिम मैच में जीत हासिल करके आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली के आर में आज करो या मरो की टक्कर। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स रविवार को यहां आईपीएल की मौजूदा सत्र के अंतिम लीग मैच में जब आमने सामने होंगे तो उन्हें प्लेऑफ की अपनी धुंधली उम्मीद बरकरार रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 20 से 24 मई के दौरान जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जिले में लू हीटवेव चलने की संभावना है। अधिक तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 50 से 60 प्रतिशत तथा दोपहर में 15 से 20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।

और आज के इस अंक में यहीं तक, कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और

0: ने रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @

0: एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़

करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत

0: दवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद भरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नासिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शहीद फिल्म का गाना।
3: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
2: आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और हंसराज की। देव कोहली की रचना है, धुन बनाई है आनंदराज आनंद ने। फिल्म का नाम शहीद।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नया दौर फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। साहिर की रचना है, धुन बनाई है ओपी नैयर ने, और इस गाने को सुनना चाहा है तेलंगाना मुंगेर विद्यानगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन आसफुद्दीन, प्रीति सुरेश, मुत्यालु बाबू, अजीज भाई, अब्दुल बाबा अनजाना। इसी गाने की फरमाइश की है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: करवा खूब रंजन, परमिट है ना इनके पास।
1: चंदा कहाँ है? चंदा, चंदा, अरे आएगी भी क्या?

फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बीके सुर, गनैया। इसी गाने की फरमाइश की थी गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, राजेश रंजन, ओम प्रकाश, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, बुल्की वाली झलना जा। रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अथर्व कुमार और रंजय कुमार परदेसी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नाम से, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति, रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार।

0: अवतार फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाजें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाना को सुनना चाहा था थाना मोड़ गढ़नुखर रोहता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुर निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली शबाना और शाहबाज। इसी गाने के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं सम्पन्न हुआ। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी संगीता को, नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र।
1: एक छोटे से अंतराल के बाद
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की

0: मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को AI हब बनाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही AI नीति बनाई जाएगी। उन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार AI समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि AI का इस्तेमाल बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
1: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और AI ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी IT डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम AI के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि AI के माध्यम से बिहार देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को AI का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादन में बढ़ोतरी लाना लक्ष्य है।
2: अभी जो योजना है नहरों का पुनर्स्थापन भी होगा, उसमें कुछ कृषि कार्य में जो किसानों के आवागमन के सुविधा के लिए कलवर्ट बनाने हैं वो भी हम लोग बनाएंगे, और भी जो किसानों के हित के लिए है कुछ सड़क बनाना है उसको भी हम बनाएंगे, जिससे न सिर्फ सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि कृषि उपज को बाजारों तक ले जाने में भी सुविधा मिलेगी।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पटना सिटी में आयोजित दो दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की NDA सरकारें समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके ही बल पर पार्टी का विस्तार हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला वैचारिक संगठन भी है। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बिहार विधान परिषद में जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदन का उपनेता मनोनीत किया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर इन नेताओं को उपनेता की मान्यता दी है। वहीं सभापति ने संजय सिंह को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक जबकि जनक राम को उप मुख्य सचेतक बनाया है। नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक मनोनीत किया गया है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 15वीं विधानसभा में ओबरा से सदस्य रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी गई है और सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सोम प्रकाश सिंह 2010 में औरंगाबाद जिले के की ओबरा विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे जदयू उम्मीदवार प्रमोद चंद्रवंशी ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सोम प्रकाश सिंह के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली 28 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधानसभा सचिवालय ने सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश

0: न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आगामी 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी उनकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगी। युवा रोजगार और कौशल विभाग पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मोक्ष धाम बनाएगी। इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रत्येक शवदाह गृह के निर्माण में 22 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 7 निश्चय 3 के तहत किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों को दे दिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश का दक्षिणी भाग लगातार लू की चपेट में चल रहा है, हालांकि उत्तर बिहार में नमी युक्त हवा से थोड़ी राहत है। पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर में लू की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म स्थान डेहरी रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.5, शेखपुरा का 43.2, औरंगाबाद का 43.1 और गया का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

0: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भाग का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी गई है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।
1: दिनांक 24 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में व्यापारिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक विकास में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार, उद्योग जगत और समाज के बीच मजबूत साझेदारी से ही विकास को गति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में 11,000 संपर्क विहीन बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 14,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान चलाकर छूटी हुई बसावटों की पहचान की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इधर कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। रांची में आयोजित 29वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में बिहार के विभास्कर कुमार ने चौथा स्थान प्राप्त किया। विभास्कर ने 10.39 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की। वहीं पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पटना में पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 96 रुपये के पार। दैनिक जागरण मौसम की खबर पर लिखता है, झुलसा रही गर्मी, 40 के पार हुआ पटना सहित 13 शहरों का तापमान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, नीतीश कुमार को मिलेगा वीवीआईपी प्रोटोकॉल, अब रनवे तक जाएगी गाड़ी। प्रभात खबर ने राज्य सरकार के निर्णय पर लिखा है, नीट यूजी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा। आज अखबार की सुर्खी है, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय सागर ने कृषि मंत्री विजय सिन्हा के हवाले से लिखा है, एग्री एटेक के तहत 86 लाख किसानों के निबंधन का लक्ष्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
3: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित

0: कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर।

भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार का समय होगा सुबह 10:45 पर।

शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। समय होगा शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन से। विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00 से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार सुनिएगा शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी गर्मियों में अपना बचाव कैसे करें, इस विषय पर। साथ ही आप लोकगीत का आनंद भी लेंगे। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा शाम 7:15 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद हम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:50 पर। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9:00 से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनना ना भूलिएगा रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राम लखन फिल्म का गाना।

राम लखन फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की। आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तेजाब से। आवाजें हैं अमित और साथियों की, जावेद अख्तर की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

इसी गीत के साथ गीतमालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजनू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आपको मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15।
3: के लोकगीत कार्यक्रम।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्ध

हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम अंकुर में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का बहुत सारा प्यार।
0: बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि वायु ही जीवन है, इसलिए इसे हम प्राण भी कहते हैं। इसी वायु या हवा के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तो जीवित रह सकता है, परंतु हवा के न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है।
2: दीदी, हवा में ऐसा क्या है जो मनुष्य को स्वस्थ रखती है?
0: बच्चों, शुद्ध हवा में अनेक गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, विषाणु एवं जीवाणु रहित रहकर सभी प्रकार की बीमारियों से बचाती है।
2: दीदी, पेड़ पौधों के लिए भी हवा उतनी ही जरूरी है ना?
0: बच्चों, मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बच्चों, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। इस तरह यदि पौधों को धूप और हवा न मिले तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिल जाती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं।
1: वो कैसे दीदी?
0: बच्चों, आप एक मोमबत्ती जलाकर उसे गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती अपने आप बुझ गई।
2: यानी कि दीदी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ही सारी चीजें जीवित हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों, जब कभी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा किसी भी कारण से कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं।
2: वायु प्रदूषण तो हम सभी के लिए हानिकारक है ना दीदी?
0: जिससे हम जिंदा हैं, जो हमारी प्राण वायु है, यदि वही अस्वच्छ या प्रदूषित हो जाए तो इसका बुरा प्रभाव तो सभी जीवों पर पड़ेगा ही। इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना और उल्टियां होना इत्यादि होने लगते हैं। बच्चों, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वायु को

0: दूषित होने से रोका जाए।
1: लिए हमें क्या करना होगा दीदी?
0: इसके लिए हम सभी मनुष्यों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। बच्चों, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक काम तो यह करना होगा कि कारखानों को शहरों से काफी दूर खोला जाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना होगा। कारखानों के दूषित बेकार पदार्थों को शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल इत्यादि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना होगा और उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों को अधिक बढ़ावा देना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चले। इससे हवा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा कम होगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग जंगलों को काटकर रहने लायक स्थान और अन्य जरूरतों के लिए उपयोग में लाते जा रहे हैं। इस तरह भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों, वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। लोगों को यह बताना होगा कि पेड़ पौधों को बेरहमी से न काटें, बल्कि नए नए पेड़ पौधे लगाते रहें।
1: हाँ दीदी, हम सभी को इन सब बातों को ध्यान रखना होगा और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाने होंगे।
0: बिल्कुल, यदि हम सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार रहें और ऐसा कोई काम न करें जिससे उसे नुकसान पहुंचे या वायु प्रदूषण बढ़े, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा और हम सभी स्वच्छ पर्यावरण में खुली हवा में स्वस्थ बनकर रहेंगे। अब समय है कि आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज में सुना जाए कविता, चुटकुला, पहेली वगैरह। तैयार है ना आप सब सुनाने के लिए?
2: जी।
0: सबसे पहले सन्नी कुमार से सुनते हैं एक कविता।
3: सुना कहानी मेरी नानी अच्छी अच्छी बड़ी पुरानी, जंगल में जब बरसा पानी बनों ने जबकि मनमानी, चला ढूंढता सा तब हाथी, खोया था मोहन का साथी, सोई थी जब सारी दुनिया जाग रही थी कैसी परिया, जब प्यासे थे राजा रानी, बोली क्या नानी की नानी, उड़न खटोला कहा गया है, कैसी थी वो सहसुहानी, दूल्हे मेले तय समय से, किसने खाया दूध बता से, फूल सुनहरे जुगनू तारे, चंदा मामा के गुनसारे, मुझे बता दे वही सुना दे वही कहानी बड़ी पुरानी।
0: वही कहानी बड़ी पुरानी, बहुत अच्छी लगी सन्नी की कविता। और बताइए आपका क्या नाम है?
4: प्राची मेहता।
0: क्या सुनाइएगा?
4: कविता
0: सुनाइए।
4: हमें

0: चाहे जो भी आए आगे बढ़ते रहते हैं।
1: राधा चाहे जो भी हो आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत प्यारी कविता थी, बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या नाम है?
0: श्रेया कुमारी।
1: क्या सुनाएगा श्रेया?
0: पोयम
1: सुनाइए।
0: कितने सुंदर फूल कमल के पानी में ही खिलते, पीले और सफेद गुलाबी कई रंगों में मिलते हैं। सब फूलों के राजा हैं, इतने बड़े बड़े दिखते हैं, कीचड़ से ऊंचे उठकर कितने सुंदर लगते हैं।
1: फूल सुंदर लगते हैं ना?
2: जी जी दीदी।
1: और आपका क्या नाम है?
0: साक्षी।
1: क्या सुनाएगा साक्षी?
0: बिता
1: सुनाइए।
0: बादल आए आसमान में बादल, रज रज के बसुरे, कड़क के बसुरे, अधिकतम बसुबल भींग रही है मेरी भैया। बंदर मामा लटक रहे थे, पकड़ पेड़ की डाली, उछल कूद में भूल गए वो नीचे बहती नाली, नाली में उछल निकल के भागे उठकर मामू।
1: बहुत प्यारी कविता थी साक्षी की। और आपका क्या नाम है?
3: आदित्य कुमार।
1: क्या सुनाएगा आदित्य?
3: कविता
1: सुनाइए।
3: सुबह ने एक खेत में छुपकर अपना नगर बसाया, काले गोरे मोटे पतले सभी घर के भाया, कभी जागते कभी सोते, कभी हंसते कभी रोते, छिप छिप कर फसल उड़ाते कभी नहीं हाथ में आते।
1: छिप छिप कर फसल उड़ाते कभी हाथ ना आते, चूहे सारे फसल खा जाते हैं।
3: यस दीदी
4: की। आइए बच्चों, विश्व फुटबॉल दिवस पर लेते हैं एक जानकारी। बच्चों, स्वस्थ रहने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे हम आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस खेल को अलग अलग धर्म, जाति और राज्य के लोग मिलकर खेलते हैं। आपस में समझदारी, सहिष्णुता, सम्मान और एकजुटता की भावना होती है। इसके अलावा फुटबॉल सामाजिक समरसता को भी बढ़ाता है। यह खेल विभिन्न समुदायों के बीच बाधाओं को तोड़ता है और एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग

आपसी समझ, सहिष्णुता, सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होते हैं। फुटबॉल के इसी महत्व को देखते हुए 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान 25 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शताब्दी मनाने के लिए चुना गया था। इस मील के पत्थर को मान्यता देते हुए महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व इसके महत्व को स्वीकार करे, यह भी कि यही वह खेल है जो सहयोग के लिए स्थान बनाता है।

0: महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व इसके महत्व को स्वीकार करे, यह भी कि यही वह खेल है जो सहयोग के लिए स्थान बनाता है, सभी देशों को शांति, विकास और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में फुटबॉल और अन्य खेलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हम विश्व फुटबॉल दिवस पर ले रहे थे एक जानकारी। इसी के साथ लेते हैं कार्यक्रम में यही पर एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब आप स्कूल में लंच बॉक्स में मनपसंद लंच ले जाते होंगे और आपकी क्लास का ही कोई बच्चा लंच नहीं लाया हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, जरा बताइए तो।
2: कोई बात नहीं दीदी, उसे हम अपना लंच खिलाएंगे। हाँ, कभी कभी स्कूल में जब मैं लंच लाना भूल जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ मुझे अपना खाना खिलाती हैं।
3: मैं दीदी अपना खाना सबके साथ बांट के खाती हूँ। मेरी दादी कहती हैं हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: दीदी, मैं एक पहेली पूछूं?
0: हाँ हाँ, पूछिए।
2: एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। एक थाल मोतियों से भरा, ऐसा क्या हो सकता है?
4: आसमान और तारे, मुझे तो मुझे पहले ही से पता था।
2: एक पहेली मैं पूछती हूँ। ये दोनों है सगे भाई, दोनों ना करते कभी लड़ाई, एक कहीं यदि खो जाता दूजा कभी काम न आता।
5: दोनों भाई हैं, कभी लड़ाई नहीं करते, ऐसा क्या हो सकता है?
2: एक बात है, दोनों पहनने के काम आता है।
5: पहनने के काम आता है,
0: सोचो सोचो।
2: एक कहीं यदि खो जाता दूजा कभी काम नहीं आता।
4: हाँ, अब समझ आया, ये तो जूता है।
0: अच्छा बच्चों, अब एक पहेली हम भी पूछते हैं।
2: जी दीदी, पूछिए पूछिए।
0: कौन जवाब देगा?
2: मैं दूंगी।
0: आप भी देंगी और बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। पहेली है, एक पंछी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, बादल देखे छमाछम नाचे, अलबेला मस्ताना।
2: ये तो मोर है।
0: बिल्कुल ठीक। खूब मजा आया ना इन पहेलियों का हल ढूंढने में। हम सभी ने मिलजुल कर सभी पहेलियों का हल ढूंढ निकाला।
2: हाँ दीदी, बहुत मजा आया। दीदी, मिलजुल कर काम करने में बहुत मजा आता है।
0: बिल्कुल, मजा भी आता है और इससे असंभव काम भी संभव हो जाता है। आपने अंधे और लंगड़े की कहानी तो सुनी होगी ना, कि कैसे मुसीबत के समय दोनों संकट से बाहर निकल आए थे।
4: जी दीदी।
0: बच्चों, मिलजुल कर रहने की जरूरत पड़ने पर सहयोग और मदद की भावना हर किसी में रहनी चाहिए। आज भी यदि हम देखें तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो दूसरों की भलाई को अपने सुख की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। दूसरों की भलाई सच्चे हृदय और निस्वार्थ भाव से करते हैं। आइए सुनाती हूँ आपको ऐसी ही एक कहानी। बच्चों, एक घने जंगल में एक झोपड़ी थी, उसमें एक साधु रहते थे। वो स्वभाव से बड़े दयालु और सीधे थे। जो भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेते थे। एक बार की बात है कि रात का समय था और बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। साधु जी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर सो रहे थे। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। साधु जी ने सोचा, इस समय कौन आया है, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। ऐसे तूफान और मूसलाधार वर्षा में इस जंगल में कौन आ सकता है। वे उठे और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक आदमी

0: था। वर्षा से उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। ठंडी हवा के कारण वह कांप रहा था। साधु को देखते ही उसने कहा, महाराज, मैं रास्ता भूलकर इधर आ गया हूँ। वर्षा से बचने के लिए आसपास कोई जगह नहीं मिला। विश्राम करने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए तो जीवन भर आपका उपकार मानूंगा। सुबह होने पर मैं चला जाऊंगा। साधु जी ने अपनेपन से कहा, चिंता मत करो, यह कुटिया तुम्हारी ही है। इस कुटिया में एक आदमी लेट सकता है और दो आदमी अच्छी तरह बैठ सकते हैं। आओ, हम दोनों सुखपूर्वक बैठेंगे। साधु ने बड़े प्रेम से उसको अंदर बुला लिया। द्वार बंद कर दोनों आराम से बैठ गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। साधु ने फिर दरवाजा खोला। दरवाजे पर फिर एक आदमी भींगता हुआ कांप रहा था। उसने भी रात में आराम करने के लिए साधु से प्रार्थना किया। साधु जी ने कहा, खुशी से अंदर आ जाओ, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। संकट के समय किसी का भी सहयोग करना मानव का कर्तव्य है। इस कुटिया में एक आदमी लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, तीन आदमी का एक साथ खड़ा रहना बड़ा सौभाग्य है। आओ अंदर, हम तीनों खड़े रहेंगे। तीनों अंदर खड़े हो गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। साधु ने फिर से दरवाजा खोला। देखा तो पहले की ही तरह एक आदमी दरवाजे पर खड़ा ठिठुर रहा था। साधु ने कहा, तुम अंदर आकर खड़े रहो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तुम बहुत देर तक ठिठुरते रहे हो, अब मैं ठिठुरन को महसूस करूंगा। अंदर तीन से अधिक आदमी खड़े नहीं रह सकते। साधु ने उस व्यक्ति को अंदर भेज दिया और स्वयं झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए। वे रात भर सर्दी में खड़े रहे, लेकिन और लोगों का आराम देखकर उन्हें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था। बच्चों, सहयोग मानव का कर्तव्य है। प्रायः देखा जाता है कि इंसान दूसरों से सहयोग तो चाहता है, पर दूसरों के लिए त्याग नहीं करना चाहता। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सहयोग और मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। अब बताइए, कैसी लगी यह कहानी आपको?
1: दीदी, कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी से सीख भी मिली।
0: बताइए, क्या सीख मिली कहानी से आपको?
2: हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए।
1: काम भी हमें मिलजुल कर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, मिलजुल कर या एकता की भावना रखकर कोई काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसे हम नन्हे जीव जंतुओं में भी देख सकते हैं, जैसे मधुमक्खियां मिलकर शहद इकट्ठा करती हैं, या चींटियां भी मिलजुल कर काम करके अपना खाने का भंडार भरती हैं।
2: दीदी, मिलजुल कर काम करने से समय की भी बचत होती है।
0: बिल्कुल, जो काम एक आदमी को पूरा करने में बहुत समय लगता है, उसी काम को यदि मिलजुल कर किया जाए तो समय की तो बचत होगी ही, आत्मविश्वास और प्रेम भी बढ़ेगा। बच्चों, इन अच्छी अच्छी बातों के साथ अब समय है एक अच्छे से और प्यारे से गीत का। आइए सुनते हैं यह गीत।

अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में। बच्चों, आलू हर किसी का पसंदीदा होता है। साल 2024 से अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जा रहा है। आलू के विविध पोषण संबंधी और एक अमूल्य खाद्य संसाधन के रूप में एवं ग्रामीण परिवारों और उत्पादकों के लिए आय के स्रोत के रूप में इसके योगदान के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि आलू के खाद्य सुरक्षा और पोषण में इसके योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाया जाए। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर कर रहे थे बातें। और बच्चों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय हो रहा है कि हम अपने श्रोता बच्चों को बता दें कार्यक्रम का पता। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाज़त। जय हिंद बच्चों।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। पेश है भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किरण पांडे के इस गाने से, जिसे गाया है किरण पांडे ने और गीतकार हैं तारकेश्वर मिश्रा राही, संगीतकार संजय पांडे। एल्बम का नाम मनवा उड़ उड़ भागता।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहू और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: आइए सुनते हैं अपनी पसंद का ये गीत। मैं हूँ सामने,
1: मेरे सामने। समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू बहू
2: हाँ?
1: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
2: हाँ?
1: डायरी ला कर दे मेरी।
2: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
1: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
2: हु?
1: अच्छा बता कौन सा काम है?
2: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
1: है।
2: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
1: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
2: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
1: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
2: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।

0: नौटंकी
1: जल जाती है,
0: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
2: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
3: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
2: कहा था ना हमने सासू माँ, ये फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया, सासू माँ एक आइडिया, एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
0: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
2: क्यों?
4: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
2: क्यों क्यों क्यों क्यों
4: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
2: आप।
4: सास कौन?
2: आप।
4: तो सुनीता कौन?
2: आप।
4: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
2: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से करते हैं। अच्छा बताइए, सुनीता देवी कौन?
0: मैं।
2: और विवेक भारती की फैन कौन?
4: मैं।
2: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
4: मैं।
2: तो कॉलर बनेगा कौन?
0: मैं। करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
3: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
2: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है, वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
0: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
3: तुम लोग उसे तो बस बहस करवा लो।
2: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं ना।
3: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
2: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
3: ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा, हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं, बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आपने अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं?
3: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
2: पिताजी वो हेलो फरमाइश
3: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
0: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर, इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
3: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरे करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
3: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार, इस बीच रिंग टोन बजती है।
0: सुनो जी,
3: हेलो,
0: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
3: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
0: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
2: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
3: शट अप
0: शट अप।
4: बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतने दिनों

0: से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हो विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या? हैं? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: देवा देवा, मी किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही। काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
1: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से, पानी गांव से।
1: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
1: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
1: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या
1: अरे तुझा मशीन लगा के लो तू?
0: अरे
1: अरे, यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
1: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायला आवडतं का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
1: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
0: वो क्या है ना,
1: बहाने बनाओ उनका।
0: क्या है ना,
1: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
1: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद नहीं कर दिया।
1: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
1: मृणमयी, मई जलगांव से बोलत है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
0: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
1: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बापरे,
1: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
1: आता तुम्ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
1: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
1: बहुत बकवास
0: है,
1: एकदम एकदम बकवास जा रहा
0: है।
1: एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
0: अरे
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
1: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
0: जी मैं हूँ समता सिंह।
1: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
0: क्या
1: है? अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
0: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसी मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: अरे अरे, गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
0: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
1: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो, अपने बॉस का नंबर दो।
0: ब, ब, ब, ब, ब,

0: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
1: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
0: ओ अरे अरे वो सिर्फ छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
1: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
0: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठाई।

0: ट्रिंग
1: हे भगवान
0: ट्रिंग
1: हे भगवान
0: ट्रिंग ट्रिंग
1: क्या करूं फिर फोन बजने लगा एक काम करती हूँ फिर उठा लेती हूँ फोन हेलो हेलो हेलो फरमाइश आप कौन बोल रहे हैं
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है आप बोलती हो तो सूरज चमकता है आप बोलती हो तो हम सुनते हैं आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलियन वन का सलाम अब बस एक कर दीजिए काम हमको दे दीजिए इनाम गाना सुनवा दीजिए जनाम
1: जनाम जनाम ये जनाम क्या होता है
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया जी जनाब हैगा असल में हाँ
1: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है
2: जी, मैं हूँ ऑल इन वन यानी मैं ही टेलर मैं ही प्लम्बर मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर
1: अच्छा
2: करवा लो जो भी करवाना हो काम गाना सुनवा दो जनाब
1: है फिर जनाब हदे जी अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं पहले तो सुनवाना चाहते हैं हाँ बोलो हाँ
1: हाँ
2: सुनवाओ
1: हाँ
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने ही लूट लिया घर यार का अशकों की माला मेरे गले पहना के खुश है वो घर किसी और का बसा के कर दिया खून देखो मेरे एतबार का यार ने ही लूट लिया घर यार का अच्छा सिला दिया अच्छा लगा
1: बहुत अच्छा लगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया अब हम क्या सुनवाएं आपको
2: हाँ जी ऐसा कीजिए मुझे आप कुछ मत सुनवाइए हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको
1: हाँ
2: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ ही याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है
1: अरे मिस्टर ऑल इन वन
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: सुनिए तो
2: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में कैसे दिखाऊं उसे दीवानगी ने पागल किया है कैसे बताऊं उसे अजीब आवाज़ तो कीजिए
1: अपने

0: प्यार
1: काट दिया इसका फोन। जिसे मैं प्यार करता था, गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
1: अरे फिर बजने लगे घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
3: बोल नहीं रहे हैं, बोल रही हूँ।
1: अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
3: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
1: हाँ
3: हेलो। गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
1: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
3: मैं पुणे से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
1: है? सास की शिकायत?
3: हाँ,
1: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
3: तो क्या?

0: हुआ, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कहीं अपने दिल की बात
1: है,
0: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है खड़ूस कहीं की।
1: अरे अरे अरे अरे ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
0: गलत फहमी? अच्छा बताओ किसकी सास है, आपकी या मेरी?
1: आपकी।
0: तो सच किसे पता होगा?
1: आपको।
0: तो कौन बोलेगा
1: आप?
0: और सुनेगा कौन?
1: आप मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
0: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
1: कहाँ से आ गई है कॉलर? हाँ
0: देखो अब मुकर नहीं सकती आप।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
1: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
0: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है।
1: हाँ,
0: वो मुझे सताती हाँ, है।
1: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
0: चुप चुप, बोलो हाँ वरना।
1: हाँ हाँ भाई हाँ,
0: उसकी
1: हाँ,
0: कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
1: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
0: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ
1: हाँ हाँ हाँ।
0: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
1: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
0: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
1: हाँ
0: तो आप सारे काम सास से करवाने चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
1: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
0: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
1: अरे हाँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
1: हाँ,
0: बोलो
1: पर,
0: हाँ।
1: नहीं पर हाँ,
0: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
1: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ हाँ हाँ।
0: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
1: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
0: हेलो
1: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, ना से रोग हरे से पीरा, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुवीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकटे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जुलावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी, मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूँ कि नहीं लूँ? लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
0: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
1: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
0: हाँ समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: हे भगवान क्या हुआ है इन्हें, बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
1: बताइए मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को।
1: अरे ये क्या कह डाला करप चली नाच पीटी, ये क्या क्या मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
0: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
0: हेलो फरमाइश का सपना?
1: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
3: हेलो फरमाइश।
4: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें।
5: बिल्कुल।
4: और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई।

0: हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
0: जी हाँ,
1: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
0: और उसका शीर्षक था ये
1: उन दिनों की बात है।
0: तो मंदाकिनी जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है, असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
1: बिल्कुल
0: हाँ, और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाए भी करते थे।
0: चलिए इसका मजा लेते हैं।

0: जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप। पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप। आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप जुबेल थीप जुबेल थीप।
1: ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तिला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन हैं, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों।

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाएं तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उससे कहा जाता कि भाई यार 10 सीगम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सीगम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था, और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आह निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि यह सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी, और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के 2 मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता।

और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। यह कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड M.N. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया 2-3 किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर 2 समोसे मंगाए जाते हैं, 1 समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की झील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा, बैठ। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। यह संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप्पे, ए लेके जा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई?

कुछ दर्शक जो होते हैं वो जंप और जर्फ पकड़ने के विशेषज्ञ होते हैं, और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते हैं, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमय रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हा? मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था, और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारत चला गया। कुछ लोग जो थे, मतलब पहला दिन और पहला शो, इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माएं ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था, जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, तभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पर चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी वालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था, और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अरे सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी हैं आप लोगों ने कभी टिकट के लिए? मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हम एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था, और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया, तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया, और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना? उन्हें कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आंकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में यह उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की हैं, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के

अब खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हों, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या, गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया है उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है, आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती। जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है, कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं, उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है, यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए, कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे।

70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे, वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी, वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं, ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं। मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ दे के परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवर लाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है, बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता, टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला, वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 Idiots ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी, हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना वो जिया हुआ समय, सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है

0: हम फिर से जी लें, याद कर लें चीजों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना चार खेलों में, आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया,
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और उसका शीर्षक था ये
3: उन दिनों की बात है।
2: इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार।
4: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने

0: कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे।
1: जो

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज़, ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओ, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते, और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने, और अच्छा तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है, और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भागदौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांत

का एहसास कराता है और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा

एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गुल्जन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अटखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है। एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी

आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने, एक और श्रोता लिखती है कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कह उठता है मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी। बहुत मजा आया था जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़

पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

वहीद रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूं, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं और निकलने वाला हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहां तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है, दिल्ली में पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं, क्या किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी, सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

हेलो सजना, इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल और एक्स्ट्रा क्लास की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना के 79 केंद्रों समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और पूर्वाहन 11:30 बजे समाप्त हो गई। दूसरी पाली की परीक्षा अपराहन 2:30 बजे से

शाम 4:30 बजे तक होगी। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी भागों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हत्याकांड के पीड़ित को सहायता राशि का चेक प्रदान किया, साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता राशि प्रदान की गई। अररिया जिला अंतर्गत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की है। इधर जिले में पॉक्सो कानून को लेकर जागरूकता अभियान सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 8 और 9 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर आज बैठक की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तदरीसी कामों में लापरवाही बरतने वाले असातजा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब तिवारी ने कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए महकमा मुसलसल काम कर रहा है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह असातज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, बैतुलखला, मिड डे मील, बेंच और टेबल के साथ साथ इजाफी क्लासों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत वज़न और पैमाइश की जांच सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जांच मराकज GATC के रोल की तौसी करेगी। इसके लिए 2013 के जाब्ता में तरमीम की गई है। वजारत उमूर सारफिन ने कहा कि नए जाब्तों के तहत ये मरकज़ वज़न और पैमाइश के

इस जुमरों की तस्दीक कर सकेगी। इनमें पेट्रोल और डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका मकसद व्यापार को शफाफ बनाना, निज़ाम में तकनीक के इस्तेमाल और आलमी मेयार के मुताबिक खुद इन्हसार भारत के अज़्म को फ़रोग देना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तहान का आज पटना के 79 मराकज़ समेत रियासत के मुख्तलिफ मराकज़ पर कामयाबी के साथ इनाकात किया जा रहा है। पहली नशिस्त का इम्तहान सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे दिन में ख़त्म हुआ। दूसरी नशिस्त का इम्तहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। इस दौरान मुख्तलिफ मराकज़ पर तहफ़्फ़ुज़ के बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। आर्मी की खुफिया एजेंसी और रियासती पुलिस की एसटीएफ टीम ने मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जराइम पेशा पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से मुंसलिक कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई मरकजी और रियासती सतह की एजेंसियाँ लगातार काम कर रही थीं। रियासत के जुनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। बेशतर मकामात पर पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास का डिहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद अजला में लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही रियासत के जुनूबी हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। दूसरी तरफ रियासत के शुमाली हिस्सों में हवा का कम दबाव बनने की वजह से आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अजला में कुछ मकामात पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान कलकत्ता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जीतने वाली टीमों को प्ले ऑफ में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने वैशाली ज़िला हेडक्वार्टर हाजीपुर में मुनक़दा एक प्रोग्राम के दौरान कत्ल के वाक़े के मुतासरीन को इमदादी रकम का चेक पेश किया। साथ ही दीगर फलाही स्कीमों के तहत भी इमदादी रकम फराहम की गई। अररिया ज़िला के तहत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल में दरार पड़ने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया के से माहिर इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की। दूसरी तरफ ज़िला में पॉक्सो कानून को लेकर बेदारी मुहिम महफूज बचपन महफूज मुस्तकबिल चलाई गई। भागलपुर ज़िला में महात्मा गांधी की आमद के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 और 9 अगस्त को एक प्रोग्राम का इनाकात किया जाएगा। इसके तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग मुनाकिद की गई। तकरीब का इनाकात गांधी शांति प्रतिष्ठान की जानिब से किया जाएगा। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु

की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती है तो योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में

0: हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण

0: खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
1: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत

0: गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत

0: के युकी भामदी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे इशारा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है।

0: संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

फिल्म माया का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मंजू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत

बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने इस गीत को सुनना चाहा। दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की, जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से, ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी,

से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: मौसी के पास।
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
2: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही दे देंगे।
2: लाई चाय बिटिया,
1: बैठ सुनो। अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
3: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
1: कहाँ कहाँ? ओ जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: वो दिन तू
1: कहाँ?
3: तूने शायद शैम्पू किया है।
0: वाह कितने खूबसूरत बाल हैं।
1: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन सुमी वो देख सुमन देखो।
1: कहाँ?
0: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
3: सच में
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
1: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
0: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
1: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका जैसे
0: कटनार की कली, यही कहेगी ना। ले समोसा का।
1: गरम गरम खिला रही हो।
0: हाँ तो फ्रेंड मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
2: बिल्कुल वेलकम।
0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त

0: चंदन के लिए लिखी है।
1: चंदन
0: वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
2: रीमा तू नहीं सुनेगी
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
3: थ्री चीयर्स फॉर भावी कवित्री।
0: तो शुरू हो जाइए मिस सुमित।
2: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा। कम ऑन।
2: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई। मैं तो चली। चलेगी सुमी?
2: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय बाय फ्रेंड।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन? यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख की रग मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके

0: वालों से मिल चुका हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन मैं चलता हूं, तू तैयार है ना? हाँ
1: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमे देख तेरी बारात आ गई।
1: सुमे
0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
2: नहीं रीमा मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: क्यों?
2: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
2: रीमा छोड़ मुझे। रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
2: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घुंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो ना मिलना मिलना, अरे तार अब ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया, थक गए
2: भैया।
0: आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ।

0: इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है, और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
1: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
0: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीलो, तुम भी पीलो, तुम भी पीलो।
2: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान, और बहू का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कुंवारी की चांद सी बहू, आते ही ग्रहण लग गया, हाँ क्या होगा।
3: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
0: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ। तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
1: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
0: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ,
0: मैं पागल नहीं।
1: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो।
1: भैया को दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
4: क्या कह रही,
1: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
1: अच्छा
4: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
1: अच्छा बाबूजी,
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
1: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। नो भाभी, भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
2: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को, क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं, सच बताइएगा मंजू जी आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
2: तो फिर
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं, लेकिन अचानक ही हमारी परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
2: ट्रेजेडी?
1: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की, उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
2: वहां ठीक रहते हैं?
1: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं,
2: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं,
1: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक।

0: हो जाएगा। वैसे ठीक रहती हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं,
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का, रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देते। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी।
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप में आता है पक देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
4: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा सुमी? तो कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?

0: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
1: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
0: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
2: चंदन
1: बेटा
2: छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो।
1: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
0: आइए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
1: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
1: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
1: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
0: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
1: ठीक है,
0: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
1: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
0: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
1: धोखा? कैसा धोखा?
0: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
1: अच्छा,
0: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
1: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
0: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
1: क्या?
0: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
1: अच्छा
0: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
1: ठीक है।
2: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उसे बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे मुझे हर वक्त समझाती रहती है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
4: अंदर आ सकता हूं?
5: ओ आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
4: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
5: अच्छी हूं। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
4: यहां रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूं सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है।

0: हर लम्हा बोझिल हो जाता है।
1: अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
2: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
2: राजन,
1: सुमी
2: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
2: और राजन,
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया, शायद चंदन से सांप हट गए हैं। हाँ,
2: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवे

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म साहिब।

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं।

0: जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
1: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजर रही आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे
1: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला, 1 आने का टिकट वहां जाता, 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
2: काम बन जाता
1: था। काम बन जाता था।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा हो। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे।

0: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
0: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
0: हाँ।
1: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
0: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
0: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भेजते हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
0: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
0: बड़ी स्टार कास्ट।
1: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबान आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है। अच्छा है प्ले तो बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में हम अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: चबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो।

0: तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, डेट होगा टूर का। बोले ठीक है। रेसले हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है वो अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। ये आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे से करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रो प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता था, मैं तीन चार, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा, कब करना चाहोगे, कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर में बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी बिटवीन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था। और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने, ठीक है। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका,

स्टेज पे, पढ़ा, तालियां बज रही हैं, ये हो रहा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करने पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप करें उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया।

0: अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ, बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश

0: कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बेहतरीन भक्ति गीत। शाम 5:10 पर, शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जैव विविधता की अहमियत विषय पर शिक्षा शास्त्री बैजनाथ पाठक से अर्चना की बातचीत। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे भरत सिंह भारती। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियां विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे ददन पांडे। शाम 6:40 पर आप आनंद लेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत। शाम 7:15 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का। शाम 7:25 पर हम अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोता आनंद लेंगे भोजपुरी लोकगीतों का रात्रि 9 बजे 9:15 पर आप आनंद लेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल का।

रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर हम पेश करेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत हमने लिया है सूर्य गायत्री की मधुर आवाज़ में।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: वंदन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और भक्ति गीत सुरे गायत्री की मधुर आवाज में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वंदन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं संजय गिरी की आवाज में यह बेहतरीन भक्ति गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, 21 मई 2026 को मौसम विभाग के आकलन के अनुसार रोहतास और कैमूर में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने कैमूर और रोहतास सहित कई जिलों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहने की संभावना जताई है। अपने जिले रोहतास में 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बने रहने का अनुमान किया गया है। बिहार में पूर्वा और पछुआ हवा के मिश्रण से मौसम में बदलाव आया है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी बिहार में गर्मी बढ़ गई है। प्रशासनिक तौर पर कैमूर जिले में वर्ग 1 से 8 तक की बच्चों की कक्षाओं को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पढ़ने वाले बच्चे स्कूल आते जाते समय लू और बढ़ते तापमान की असर से अस्वस्थ ना हों। आमतौर पर आम आदमी को भी चाहिए कि दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें, सादा और सुपाच्य भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं तथा धूप से सुरक्षा के उपाय करें। अनुमान है कि अभी कुछ और सप्ताह कड़ी धूप और लू वाले होंगे, अतः सजग रहें, सावधान रहें। श्रोताओं, आज के इस अंक में चर्चाओं के मुख्य बिंदु होंगे राष्ट्रीय स्मारक दिवस, विश्व कछुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तथा साथ ही इससे संबंधित बातचीत भी सुनिएगा। लेकिन शुरुआत इस अंक के वैज्ञानिकों से। इस अंक के वैज्ञानिक हैं सेसिलिया हेलेना और ग्रेबियल फॉरेनहाइट। सेसिलिया हेलेना एक ब्रिटिश अमेरिकी खगोल शास्त्री और खगोल भौतिक विज्ञानी थीं, जिन्होंने 1925 में अपने पीएचडी शोध प्रबंध में हाइड्रोजन और हीलियम की सापेक्ष प्रचुरता के संदर्भ में तारों की संरचना की व्याख्या प्रस्तावित की थी। 10 मई 1900 को इंग्लैंड में जन्मे सेसिलिया हेलेना प्रख्यात खगोल शास्त्री रही हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका शोध तारों के वायुमंडल से संबंधित था। उन्होंने दिखाया कि तारों का रासायनिक संगठन पृथ्वी के समान नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन की अत्यधिक अधिकता है। उन्होंने 30 लाख से अधिक परिवर्तनशील तारों का अवलोकन किया। 7 दिसंबर 1989 को सेसिलिया का निधन हो गया। श्रोताओं, इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक हैं ग्रेबियल फॉरेनहाइट। श्रोताओं, आपने तापमान को डिग्री सेल्सियस के अलावे डिग्री फॉरेनहाइट में भी अवश्य पढ़ा लिखा होगा। ग्रेबियल फॉरेनहाइट की इस स्केल का आविष्कार किया और उन्हीं के नाम पर इस तापमान मापी स्केल के नाम पर डिग्री फॉरेनहाइट रखा गया। 24 मई 1686 को पोलैंड में जन्मे गैब्रियल फॉरेनहाइट एक प्रसिद्ध जर्मन डच भौतिक विज्ञानी और वैज्ञानिक उपकरण निर्माता थे, जिन्होंने वर्ष 1714 में पहले व्यवहारिक पारे के थर्मामीटर और फारेनहाइट तापमान

0: पैमाने का आविष्कार किया। उन्होंने तापमान मापने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे मौसम विज्ञान और चिकित्सा में सटीक माप संभव हो सका। फलतः इन्हें डच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वर्ण युग का प्रमुख वैज्ञानिक माना जाता है। 16 सितंबर 1736 को ग्रेबियल फारेनहाइट ने अंतिम सांस ली। तो श्रोताओं, यह थी संघ के वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा, और अब एक नज़र विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों की। जलवायु और पर्यावरण के संदर्भ में देखें तो पता चलता है, अपने देश में विदर्भ और बुंदेलखंड क्षेत्र हीट टैप बन गए हैं, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और इसे वनों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन का परिणाम माना जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से खबर है कि वैज्ञानिकों ने पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली के 50 साल पुराने रहस्य को सुलझा दिया है। इबोला के असामान्य स्ट्रेन से निपटने के लिए विशेषज्ञ लोग नई वैक्सीन और उपचारों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि अंतरिक्ष मिशन पर नज़र डाली जाए तो खबर है कि स्पेस एक्स अपने उन्नत स्टारशिप V3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। नासा का साइकी प्रोब मंगल के निकट पहुंच रहा है। श्रोताओं, यह थी इस अंक के विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें, और अब बात कर लेते हैं 23 मई को संपन्न विश्व कछुआ दिवस की। श्रोताओं, विश्व कछुआ दिवस मुख्य रूप से कछुआओं के संरक्षण, उनके आवास की रक्षा करने और विलुप्त हो रही प्रजातियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन कछुआ के अस्तित्व के लिए मानवीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कछुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के साथ साथ इनके अवैध व्यापार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाना। ज्ञात हो कि 60% से अधिक कछुओं की प्रजातियां खतरे में हैं, इसलिए यह दिन उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कछुए को धैर्य, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार फेंग शुई में कछुए को घर में रखना शुभता का द्योतक है। मान्यताओं के अनुसार घर में रखे जाने वाले पीतल, चांदी या क्रिस्टल के कछुए घर में धन संपदा, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करता है। कछुए जलीय और स्थलीय दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मृत जैविक कचरे को साफ करके नदियों और पानी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, जिससे वे एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेत तक माने जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुए को पालना, खरीदना और बेचना दंडनीय अपराध है। अतः कछुओं का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण है। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है तो आजकल शीतल पेय बड़े ही आनंद से लिए जाते हैं। आजकल बाजार में उपलब्ध शीतल पेय पैकेट्स या बोतलों में भी बेचे जा रहे हैं, और नई पीढ़ी इन्हें बड़े ही चाव से पी रही हैं। लेकिन घर में बने शीतल पेय सर्वाधिक लाभदायक हैं। पारंपरिक शीतल पेयों में मट्ठा, दही, शिकंजी, पुदीना एवं सौंफ के शरबत स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और मानसिक पुष्टि भी प्रदान करते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं अर्पणा कुमारी।
1: सॉफ्ट ड्रिंक्स को सॉफ्ट इसलिए कहा जाता है कि यह हार्ड ड्रिंक्स से अलग होते हैं। हालांकि इनमें भी अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा हो सकती है, लेकिन यह मात्रा कुल मात्रा की 0.5% से भी कम होती है। पर जो गैर अल्कोहलिक पेय होते हैं, उनमें फ्रूट जूस, चाय और ऐसे ही गैर अल्कोहल वाले पेयों की गिनती हो।

होती है। ये पेय पीने में तो सुखद लगते हैं, लेकिन नियमित तौर पर इनका सेवन बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है। इनमें से प्रमुख समस्या डिहाइड्रेशन है। आपके समूचे शरीर के भार का करीब 60% भाग पानी होता है। प्रतिदिन पेशाब करने, सांस लेने और पसीने के तौर हमारे शरीर का पानी बाहर निकलता है। यह शरीर को सुचारू रूप से सक्रिय बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहे। इसलिए डॉक्टर्स अधिकाधिक पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर पानी के स्थान पर शीतल पेयों की सहायता ली जाती है तो शरीर में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में शक्कर और कैफीन की मात्रा अधिक होती है, यह शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। नियमित तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह से नहीं बेचे जाते हैं, उनमें शक्कर की बहुत अधिक मात्रा होती है। इनकी अधिक मात्रा में शक्कर से शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत बढ़ सकता है। इससे जहां अतिरिक्त कैलोरीज मिलती है, वहीं पर मधुमेह पैदा होने का भी खतरा पैदा होता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार सॉफ्ट ड्रिंक्स से मोटापा बढ़ने, टाइप 2 की मधुमेह, दांतों का क्षय तो होता ही है, इसी के साथ इनके उपयोग से लोगों के शरीर में पोषक तत्वों का स्तर बहुत कम हो जाता है। बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जिनकी मौजूदगी चिंता का विषय है। इनमें कैफीन होती है जिसके अधिकता में शरीर में पहुंचने पर बेचैनी पैदा होती है और नींद में बाधा पहुंचती है। बहुत सारे परीक्षणों के दौरान देखा गया है कि शक्कर से मीठा बनाए गए सॉफ्ट ड्रिंक्स के असर से बच्चों और किशोरों में मोटापा बढ़ता है। शुगर से भरपूर इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, डायबिटीज का खतरा पैदा होता है, दिल के रोगों की संभावना बढ़ती है और कुछ मामले कैंसर के भी देखे गए हैं। रोजाना सॉफ्ट ड्रिंक्स, अन्य मीठी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वाले के शरीर में खतरनाक फैट और प्रोटीन्स काफ़ी बढ़ जाती है। ठंडे पेय को पानी का विकल्प बना देने के कारण युवाओं में किडनी स्टोन के मामले में खतरनाक बढ़त देखी जा रही है। कम पानी के अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार प्रमुखता से लेने के कारण भी स्टोन की समस्या बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार किडनी स्टोन के 30% मरीजों की आयु 25 से 35 के बीच की है। आजकल किशोरों और युवाओं में खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेने का चलन बढ़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चलन स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। उनके अनुसार इस तरह की जीवन शैली के कारण लोगों में कम उम्र में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ रही है। सूखे मेवे, चॉकलेट और जंक फूड का उपयोग समस्या को और गंभीर रूप दे रहा है। वैसे तो खाने के बीच पानी भी कम से कम पीना चाहिए। जबकि युवा शीतल पेय का अधिक उपयोग कर रहे हैं, वहीं वे दिन भर में आवश्यकता से भी कम पानी का सेवन कर रहे हैं। इस वजह से शरीर के भीतर ऑक्सलेट स्टोन बनने लगा है, जो किडनी का स्टोन का कारण है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार अधिक मात्रा में लेने पर शरीर से यूरिक एसिड का स्राव अधिक होता है। श्रोताओं, 21 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। आजकल चाय हमारे घरों में सुबह की शुरुआत करने के काम आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इन्हें हमेशा लाभदायक नहीं माना जाता। वैसे तो चाय का इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक का रहा है एवं चाय दुनिया में सबसे अधिक सेवन किए जाने वाले पेय पदार्थों में चाय का नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस चाय उत्पादकों की आजीविका और चाय उद्योग में स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है चाय के उत्पादन, उपभोग और वैश्विक क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर इसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। इस वर्ष 2026 में चाय की उपयोगिता बनाए रखने, छोटे चाय किसानों का समर्थन करने और समावेशी चाय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जिसका चाय उद्योग 2025-26 में 8.700

0: करोड़ के निर्यात के साथ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में उत्पादित 80% चाय का उपभोग घरेलू स्तर पर होता है तथा चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं असम और पश्चिम बंगाल। हमारा देश मुख्य रूप से रूस, ईरान, यूएई और अमेरिका को चाय निर्यात करता है। चाय उत्पादन का 17% तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से भी प्राप्त होता है। हमारे देश से निर्यात की जाने वाली चाय में 96% ब्लैक टी होती है तथा साथ ही इनमें ग्रीन टी, मसाला टी और हर्बल टी भी शामिल है। हमारे देश के चाय का बाजार का आकार 2025 में लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अब इसे 2034 तक लगभग 16 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। श्रोताओं, कल यानी 22 मई को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रकृति ने हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे दिए हैं जो हमारी संस्कृति को बहुरंगी रूप प्रदान करते हैं। जैव विविधता हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए महाऔषधि का काम करते हैं। हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, जल, वायु एवं मिट्टी इत्यादि को प्रदूषण मुक्त रखने में भूमिका निभाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखें, जिंदगी खुशहाल रहेगी। इस विषय में और भी जानकारी के लिए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बैजनाथ पाठक जी।
1: बैजनाथ पाठक जी, आप एक प्रसिद्ध अध्यापक हैं, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: बैजनाथ पाठक जी, इंसानों को जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों का भरपूर परिवार काफी पसंद होता है, यानी जैव विविधता हम सबकी पसंद है। किंतु हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले यह बताएं कि जैव विविधता क्या है और हमारे लिए यह क्यों जरूरी है।
2: अच्छा, नमस्कार। जीवों के विविधता के बारे में ये बात है कि अनेक प्रकार की प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जीव विविधता है। इसमें दो शब्द हैं, जीव और विविधता। तो जीव में जो विभिन्नताएं हैं या विशेषताएं हैं उसी को जीव विविधता कहते हैं। बहुत तरह के जीव हैं, एक ही जीव में कई जीव होते हैं। जैसे 20,000 से अधिक चींटियों की प्रजातियां हैं, 28,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं। तो इतनी सारी प्रजातियां हैं और जब एक साथ रहती है, सह अस्तित्व रहता है और एक दोनों दूसरे में अनोन्याश्रय संबंध भी है, तो इसी को जीव विविधता कहते हैं, जीवों में जो विभिन्नताएं हैं।
1: जी वैजनाथ जी,
2: जी
1: आमतौर पर जैव विविधता के कौन कौन से संवर्ग हैं?
2: हाँ, तो देखिए, जीव विविधता के मुख्यतः दो संवर्ग हैं। एक को बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना, मतलब एक है प्राणी जगत और एक है पौधे का जगत, वनस्पति जगत।
1: जी।
2: लेकिन लेकिन एक तरह से इनका तीन संवर्ग है। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसिक डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन है। जेनेटिक मतलब सबसे अर्थ है कि अनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं इसको। जेनेटिक डाइवर्सिटी को अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, स्पेसिस को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं और इकोलॉजी को पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। तो ये तीन है और ये मुख्यतः पहला जो है वो गुण सूत्र पर आधारित है। गुण सूत्र होता है क्रोमोजम बायो में, तो गुण सूत्र पे आधारित है और एक ही प्रजाति के जीव जंतु और जानवर में पाई जाने वाली विभिन्नताएं को हम कहते हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि एक ही परिवार में, जैसे मनुष्यों की प्रजातियों के लिए होमो सेपियंस बोलते हैं इनको, तो इनमें एक ही माँ बाप के बच्चे, भाई बहन में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे उनके रंग में पाई जाती है, उनके ऊंचाई में पाई जाती है, उनके बनावट में पाई जाती है और उनके चाल चलन में, पसंद नापसंद में, रंग में, जैसे कोई काला हो गया तो कोई गोरा हो गया, कोई लंबा हो गया तो कोई घाटा हो गया। तो ये जो विभिन्नताएं हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आती है। दूसरा प्रकार है वो स्पेसीज है, वो प्रजाति।

0: है तो किसी स्थान पर एक ही समय पर दो या दो से अधिक प्रजातियों का होना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी के पास घोड़ा भी है, बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। अक्सर हम घरों में देखते हैं, हमारे घरों में जानवर होते हैं, पशु पक्षी पोसते हैं लोग, सुग्गा रखते हैं, तोता रखते हैं, मैना रखते हैं, बिल्ली रखते हैं। तो एक ही समय में ये जो प्रजातियां हैं इनके, इनमें भी काफी विभिन्नता होती है, इनके खाने में और चीजों में, इनके रंग रूप में, साइज में। तो इसको बोलते हैं प्रजातीय जैव विविधता। और अंतिम है पारिस्थितिकीय, इकोलॉजिकल। तो ये है कि किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। और जो आपस में अंतर संबंध रखते हैं, सजीव और निर्जीव में जो विभिन्नता है, सजीव और निर्जीव में जो एक दूसरे पे आश्रित अनाश्रित संबंध है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तीन प्रकार की इनके संवर्ग हुए। जी
1: जी, वर्तमान समय में हम
0: हाँ
1: कोरोना और ओमिक्रॉन के दौर का सामना कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ
1: ऐसे परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है?
0: ये तो बहुत महत्वपूर्ण है इनको बनाए रखना, क्योंकि इसके बिना आगे भयावह दृश्य देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, आजकल हम बहुत तेजी से जंगल को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारा आधुनिक जीवन है तो इससे भी असर पड़ता है। जैसे आजकल देखिए, ये सारे गाड़ियों से जो प्रदूषण फैलता है, बहुत बहुत प्रकार के जो प्रदूषण है, उसमें आप कह सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो ये सब हम, इस सबसे भी ये इकोलॉजी पर बुरा असर पड़ रहा है और ये प्रजातियां तेजी से समाप्त हो रही हैं। जैसे देखिए, मनुष्यों के टोटल, जो पृथ्वी पे टोटल प्रजातियां हैं, उसमें मनुष्य की जो संख्या है वो है 0.1%, है। जबकि इस मनुष्य ने 83% वाइल्ड लाइफ को नुकसान कर दिया और
1: जी
0: आधे प्लांट, आधे जंगल को, प्रजातियों को भी विनष्ट कर दिया 100 वर्षों
1: जी
0: के अंतर्गत। इन 100 वर्षों में मनुष्यों ने, जिनकी संख्या इतनी है, इतने सारे नुकसान कर दिए। तो ये जो जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब इन्हीं का कारण है, उन्हीं का प्रतिफल है। हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पर्यावरण पे।
1: जी बैजनाथ पाठक जी, आपने बहुत
0: जी
1: अच्छी अच्छी जानकारी दी। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।

श्रोताओं, कुदरत ने दिन इसलिए बनाया है कि हम सूरज की रोशनी में सुनहरे भविष्य को देखते हुए अपना कामकाज करीने से संवारते चलें, और रातें इसलिए बनी है कि हम चैन से विश्राम कर फिर से ऊर्जावान बने। जाड़े के मौसम में दिन छोटे पर रातें लंबी होती हैं। मौसम के मज़े लीजिए और आनंदपूर्ण बने रहें।

श्रोताओं, हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। और अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा। हाँ?

0: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सासाराम केंद्र की प्रस्तुति साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भरत सिंह भारती की आवाज़ में यह बेहतरीन लोक गीत।

तो श्रोताओं, भरत सिंह भारती की आवाज़ में अभी आपने सुना यह भोजपुरी लोकगीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में

शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ लोग आशुतोष से सुनी भोजपुरी में समाचार। शिक्षा कहनी है कि पढ़ाई में लापरवाही करे पर लोगन के खिलाफ कार्रवाई कैल जाय। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत श्री तिवारी कहले कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के मजबूत बनावे खातिर विभाग लगातार काम कर रहल बा। ऐसे में अपना जिम्मेदारी से लापरवाह मास्टर लोगन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई हुई। वहां के आगे कहनी कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच, टेबल और एक्स्ट्रा क्लास के भी व्यवस्था कल जा रहल बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 विभूति के पद्मश्री सम्मान प्रदान करी हैं। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान खातिर पद्मश्री दिहल जाय, जबकि डोमकच नृत्य के मुख्य धारा में लावे वाला लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु के मरला के बाद पद्मश्री सम्मान दिहल जाय। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में काल से 3 दिन के रोजगार मेला के आयोजन कल जा रहल बा। मेला में स्वास्थ्य और एकरा से जुड़ल लोग खातिर कंपनी हिस्सा ले रहल बाड़ी सन। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क के नियोजक संस्थान में आवेदन दे सकता लोग और स्टॉक बुक करा सकता लोग। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज पटना के 79 केंद्र समेत राज्य के अलग अलग केंद्र पर सफलतापूर्वक आयोजन कैल गई। पहला पाली के परीक्षा सवेरे 9:30 बजे से शुरू भइल और दिन के 11:30 बजे खत्म हो गई। दूसरा पाली के परीक्षा दोपहरिया में 2:30 बजे से सांझ के 4:30 बजे ले भइल। परीक्षा के दौरान सब केंद्र पर सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कैल गई रहल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारे के घोषणा कैल गई बा। पटना में पार्टी के भइल बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के प्रत्याशी बनावे के निर्णय लेहल गई बा। पार्टी के प्रदेश सचिव रामनरेश पांडे बतौलें कि महागठबंधन के और दोसर दल के साथ समन्वय बना के संयुक्त उम्मीदवार उतारे खातिर विचार कैल गई बा। आगे बतौलें कि बैठक में निर्णय लेहल गई बा कि 25 मई से सारा जिला मुख्यालय पर किसान और 10 जून के गया में किसान महापंचायत और 6 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सारा प्रखंड में पद यात्रा निकालल जाय। सेना के खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस के एसटीएफ टीम द्वारा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट के नेटवर्क चलावे वाला गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी के गिरफ्तार कैल गई बा। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोट से जुड़ल कई गो मामला दर्ज बा। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात एकर पुष्टि कैलें। वो बतौलें कि सुशील तिवारी के गिरफ्तारी खातिर कई गो केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसी लगातार काम कर रहल बा। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा में भयानक गर्मी के दौर जारी बा। ज्यादातर जगहन पर पारा 40 डिग्री के पार हो गई बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास के देहरी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल हा, जहाँ के अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कैल गई। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिला में लू चले के आशंका जतौले बा। एकरा साथे प्रदेश के दक्षिणी भागन में ज्यादातर जगह पर मौसम सुखल रही। एने राज्य के उत्तरी हिस्सा में कम दबाव के

0: क्षेत्र बने के कारण आंधी पानी और वज्रपात के स्थिति बनल बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला में कुछ जगहन पर आंधी पानी के अलर्ट जारी कैले बा। आईपीएल क्रिकेट में आज दूगो मुकाबला हुई। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहरिया 3:30 बजे से होता। दूसरका मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सांझ के 7:30 बजे से खेलल जाई। जीते वाला टीम के प्लेऑफ में जगह मिली। यह प्रतियोगिता में काल पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स के हरा दहलस। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के नमस्कार। श्रोता सभी, कार्यक्रम शुरू करे से पहले जान लिया जाओ कि आज के कार्यक्रम में हमने के का जानकारी मिले वाला बा। सबसे पहले चर्चा हुई गर्मियन में आपन बचाव कैसे कर जाओ। एकरा बाद कार्यक्रम में मन मनसाइन खातिर सुनल जाए लोकगीत, कलाकार हुई हन वंदना कुमारी। आज वार्ता के विषय हुई नशा के बढ़त प्रवृत्ति अवकरा से होखे वाला हानि, बताई हन ददन पांडे। एक जानकारी में आज बतकही के विषय हुई कॉमनवेल्थ दिवस, आ बतियावल जाई अपना आमदनी भर ही खर्च करें विषय पर। अंत में जायजा लिहल जाई मौसम पूर्वानुमान के। देखी पूरा दुनिया में ईंधन बचावे पर जोर दिहल जा रहल बा। खाड़ी देश के जवन स्थिति बा, ओइजा युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति के बाद एकर महत्व और बढ़ गेल बा। काहे कि ईंधन जवन बा वो हमनी के जीवन के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के आधुनिक युग में घर से लेके उद्योग तक आ परिवहन से लेके कृषि तक लगभग हर क्षेत्र में ईंधन के उपयोग कइल जा रहल बा। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आ अन्य तरह के ईंधन हमनी के दैनिक जीवन के आसान बनावेला। लेकिन हमनी के ई समझे के चाही कि अधिकांश ईंधन आयकर संसाधन सीमित बा। यदि हमनी के एकर अनियंत्रित आ अत्यधिक उपयोग करत रहल जाई त एगो समय ऐसन आई जब एकर भंडार कम होखे लागी। ईंधन के अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ेला, पर्यावरण के नुकसान पहुँचेला आ वैश्विक तापमान में वृद्धि होला। आज जलवायु परिवर्तन पूरा दुनिया खातिर एगो बड़ चुनौती बन चुकल बा। ईंधन बचावे खातिर हमनी के कई छोटा लेकिन प्रभावी कदम उठा सकतनी जा।

छोट दूरी खातिर पैदल चले के अभ्यास कर जा सकेला या साइकिल के उपयोग करे के आदत डालल जा सकेला। सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग करे के चाही। हमनी के अपन जो वाहन चलावत नहीं जा ओकर नियमित सर्विस करावे के चाही ताकि वो कम ईंधन खर्च करे। अनावश्यक रूप से वाहन के इंजन चालू ना रखे के चाही। एकरा साथे साथ हमनी के सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा आ अन्य दूसरा तरह के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के भी अपनावे के चाही। काहे कि देखी इंजन के ईंधन के बचत खाली एगो पैसा के बचत नहीं खे बल्कि देश के प्रगति आ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ल चीज बा। अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो बड़ स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन ले आवल जा सकेला। ऐसे हमने के संकल्प लेवे के चाही कि ईंधन के उपयोग सोच समझ के करी आ दूसरा लोग के भी एकरा खातिर प्रेरित करी। श्रोता सभे ये सब बात कही तो हमने के होते रही लेकिन आई जानल जाओ गर्मी में अपन बचाव कैसे कर जाओ। काहे कि इतना भयंकर गर्मी पड़ रहा बा खासकर बुजुर्ग लोग खातिर चाहे बच्चन खातिर ये ज़्यादा परेशानी के सबब बनल बा। हालांकि गर्मी के मौसम हमनी के जीवन के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन ये मौसम में बढ़त तापमान आ तेज धूप हमनी के स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव डाल सकेला। गर्मी के दौरान लू लगना, शरीर में पानी के कमी होना, थकान महसूस होना, चक्कर आना आ अन्य स्वास्थ्य समस्या होखे के संभावना बढ़ जाला। ऐसे यह मौसम में सावधानी आ जागरूकता दोनों बहुत महत्वपूर्ण बा। सबसे पहले हमनी के अपना शरीर में पानी के पर्याप्त मात्रा बनौले रहे के चाही। गर्मी में अधिक पसीना निकले के चलते शरीर से पानी आ आवश्यक नमक जौन बा तौन कम हो जाला। ऐसे हमनी के समय समय पर पानी पियत रहे के चाही। एकरा साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी आ ताज़ा फल के सेवन करे के चाही। काहे कि इस शरीर के ऊर्जा आ ताजगी देवेलन। दोसर महत्वपूर्ण बात ई बा कि हमने के अपना पहनावा पर भी ध्यान देवे के चाही। गर्मी में हल्का रंग आ सूती के कपड़ा पहने के चाही। काहे कि इस शरीर के ठंडा रखे में मदद करेलन। जब भी घर से बाहर निकली अपना सिर के टोपी, गमछा आ चाहे छाता से ढक के रखे के चाही ताकि तेज धूप के सीधा प्रभाव हमनी के शरीर पर मत पड़े। हमनी के भोजन के प्रति भी सावधानी बरते के चाही। ए मौसम में हल्का आ ताज़ा भोजन करे के चाही। अधिक तेल मसाला वाला चाहे बासी भोजन से बचे के चाही। ऐसे फल आ सब्जी जौना में पानी के मात्रा अधिक होखे उनका के अपना भोजन में शामिल करे के चाही। एकरा अलावा गर्मी में स्वच्छता के भी विशेष ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। हमनी के साफ आ शुद्ध पानी पिए के चाही। गंदा पानी आ खुला में जौन खाद्य पदार्थ बिकता ओकरा के खाए से बचे के चाही। काहे कि ऐसे पेट संबंधी बीमारी हो सकेला। एकरा अलावा हमने के दोपहर के समय जब तेज धूप बा ओ घड़ी बाहर जाए से बचे के चाही। खासकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यदि बाहर गई बहुत आवश्यक बा तो पर्याप्त पानी साथ रखे के चाही।
छोट

बच्चा आ बुजुर्ग लोग के साथ साथ जे बीमार व्यक्ति बा ओकरा भी गर्मी से विशेष रूप से बचावे के जरूरत रहेला। तो गर्मी के मौसम खाली परेशानी के मौसम नहीं खे, बल्कि यदि हमनी के सावधानी आ सही आदत के अपनाई जा तो हमनी के स्वस्थ आ सुरक्षित रह सकेले जा। हमनी के स्वयं भी जागरूक रहे के चाही आ दूसरा के भी एकरा प्रति जागरूक करे के चाही। तो श्रोता सभे बत कही अभी आउर होई, लेकिन ओकरा से पहले कार्यक्रम में कुछ मन मनसाइन भी कर लिया जाओ। सुनल जाओ एगो झूमर कलाकार बानी वंदना कुमारी, आई सुने के।

रुक रहे के चाही आ दूसरा के भी एकरा प्रति जागरूक करे के चाही। तो श्रोता सभे बत कही अभी आउर होई, लेकिन ओकरा से पहले कार्यक्रम में कुछ मन मनसाइन भी कर लिया जाओ। सुनल जाओ एगो झूमर, कलाकार बानी वंदना कुमारी, आई सुने के।

0: वंदना कुमारी के गीत कतना निमन लागल, मन मिजाज एकदम हरियर हो गई। आ यह गीत खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन लिया जाओ कुछ संदेश।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करें अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करें विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: श्रोता सभे, आज कॉमनवेल्थ दिवस है। ये हर वर्ष 24 मई के मनावल जाला। यह दिवस के उत्पत्ति महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई 1819 से जुड़ल बा। पहले ये एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस के रूप में मनावल जात रहे। 1958 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन एकर नाम बदल के कॉमनवेल्थ दिवस कर देलन। भारत 1950 में राष्ट्रमंडल के हिस्सा बनल रहे। कॉमनवेल्थ दिवस विश्व के अनेक देशन के बीच आपसी सहयोग, मित्रता, समानता और विकास के भावना के मजबूत करे के उद्देश्य से मनावल जाला। कॉमनवेल्थ देशन के एगो ऐसन समूह है जौना में विभिन्न देश स्वेच्छा से सदस्यता ग्रहण कैले बन। ए देशन के उद्देश्य एक दूसरा के साथ सहयोग, शांति आ सामाजिक आर्थिक के साथ शैक्षिक विकास के बढ़ावा देना बा। कॉमनवेल्थ में दुनिया के अनेक देश शामिल बन जौना में भारत भी एगो महत्वपूर्ण सदस्य है। स्वतंत्रता प्राप्त कैला के बाद भारत ए संगठन के सदस्यता ग्रहण कैल आ समय समय पर एकरा माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ावा दिहल गेल। कॉमनवेल्थ दिवस के मुख्य उद्देश्य लोग के इस संदेश देना बा कि अलग अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा आ विचार रखे वाला देश भी एक साथ मिलके विकास आ शांति खातिर काम कर सकेलन। ये हमने के एकता, सहयोग आ भाईचारा के शिक्षा देवेला। आज दुनिया अनेक चुनौती के सामना कर रहल बा, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा के कमी आ स्वास्थ्य संबंधी समस्या। इस समस्या के समाधान एगो अकेले देश के बस के बात नहीं है। एकरा खातिर सब देश के मिल के काम करे के हुई आ कॉमनवेल्थ यही सहयोग आ साझेदारी के भावना के बढ़ावा देवेला। कॉमनवेल्थ दिवस युवा लोग खातिर भी बहुत महत्वपूर्ण बा, कहें कि कौनो भी युवा देश के भविष्य हो खेलन। ये दिवस हमनी के सिखावेला कि हमनी के शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आ तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े के चाहिए आ विश्व में शांति के साथ मानवता के मूल्य के भी मजबूत करे के चाहिए। हमनी के अपना जीवन में सहयोग, अनुशासन, समानता आ एकता के भावना के अपनावे के चाहिए। कहें कि जब हमनी के मिलजुल के काम कैल जाए तबे समाज आ देश के विकास संभव बा। तो ये संदेश के हमनी के अपनावे के चाहिए आ एगो बेहतर समाज

0: और बेहतर विश्व के निर्माण में अपन योगदान देवे के चाहिए। आई अब हमनी के एगो बड़ा ही समसामयिक मुद्दा पर बत कही कही जाओ, विषय बा आमदनी के अनुसार ही खर्च करी। काहे कि ई विषय हमनी के जीवन से सीधा जुड़ल बा, हर व्यक्ति खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। कहल गइल बा कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब जितना चादर होखे उतने ही पैर फैलावे के चाहिए। यह कहावत के अर्थ ई बा कि हमने के अपना आय और क्षमता के अनुसार ही खर्च करे के चाहिए। यदि मान लें कि कोई आदमी अपना आमदनी से अधिक खर्च करता है तो ओकरा आर्थिक कठिनाई के सामना करे के पड़ सकेला। आज के समय में लोग के आवश्यकता के साथ साथ इच्छा भी बढ़ल जा रहल बा। लोग कई बार दिखावा करे खातिर आ फैशन के चलते अनावश्यक खर्च करे लागलन। उ एक दूसरा के देख के महंगी वस्तु खरीदल चाहेलन, चाहे भले उनकर आय एकरा खातिर पर्याप्त होके या मत होके। ऐसे धीरे धीरे कर्ज के जौन बोझ बा उ बढ़े लागेला, आ जब कर्ज के बोझ बढ़े लागेला तब व्यक्ति मानसिक तनाव के शिकार होखे लागेलन। आमदनी के अनुसार खर्च करे से कई गो लाभ होला। देखिए, पहला लाभ तो ई बा कि व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेला। आ जब आर्थिक रूप से हमनी के सुरक्षित रह जाई तो घर में खुशहाली भी रही। दूसरा बा कि बचत करे के आदत विकसित होला। बचत कइल गइल धन भविष्य में कौनो आपात स्थिति, बीमारी, शिक्षा चाहे अन्य जरूरत में काम आवेला। एकरा अलावा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेलन आ उनका दूसरा पर निर्भर ना रहे के पड़े। कर्ज में पड़ल आदमी के हमनी के सुनले बन जा परिवार के परिवार बर्बाद हो जाला। अक्सर हमनी के तरह के समाचार सुने के मिलेला। तो हमनी के हमेशा अपना आय के एगो हिस्सा बचत खातिर अलग रखे के चाहिए। ई छोट छोट बचत आगे चल के बड़ पूंजी बन जाला। यदि हमनी के अपना जरूरत आ इच्छा में अंतर समझ नहीं जाए तो खाली आवश्यक चीज पर ही खर्च करे के चाहिए तो हमनी के जीवन जवन बा वो अधिक सुखद आ संतुलित हो सकेला। कई बार अनावश्यक खर्च से हमनी के पीड़ा भी होला, परिवार में विवाद भी होला, आ जब जरूरत पड़ेला तो हमनी के ओ घड़ी पैसा ना बचे कि सही जगह पर ओकरा के लगावल जाओ। तो ऐसे अगर हमनी के अपना चादर के अनुसार पैर फैलावल जाई, कुछ बचत कइल जाई तो हमनी के कबो परेशानी में ना पड़ल जाई। परेशानी में पड़ल भी जाई तो ओकरा से हमनी के जब बचत रही तो निकले के रास्ता दिखाई दही। मान ली अचानक परिवार में कोनो परेशानी भइल तो ओकरा से हमनी के निकल सकेने जा। अब आई सुनल जाओ, नशा के बढ़त प्रवृत्ति और उसे होखे वाला हानि पर ददन पांडे से ई एगो वार्ता।
1: नशा मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ जब किसी व्यक्ति के जीवन में आदत के रूप में प्रवेश करता है तब व्यक्ति उस नशीले पदार्थ का गुलाम हो जाता है। उसे नशा करने की लत लग जाती है और फिर वह व्यक्ति नशा पान किए बिना नहीं रह सकता। यह

0: एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह है कि नशा पान करने का शिकार व्यक्ति नशीले पदार्थ की मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे उसके शरीर की तंत्रिका प्रभावित होती है और मानव स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। नशीले पदार्थ के सेवन से जहां मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं वह आर्थिक रूप से भी काफ़ी खर्चीला होता है। लेकिन आदत से लाचार होकर व्यक्ति कोई भी उपाय करके नशीले पदार्थ को प्राप्त करता है। समाज में नशा पान को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी नशा में डूबा कोई व्यक्ति अन्य बात सोच नहीं पाता और वह हर हाल में नशा पान करना चाहता है। नशा के चक्कर में कई परिवार उजड़ जाते हैं और आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। नशीले पदार्थों में शराब, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन जैसे पदार्थ शामिल हैं। नशीले पदार्थों के व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता है। यह कारोबार पूरी तरह अवैध है, किंतु अत्यधिक मुनाफा के कारण यह धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक साजिश के तहत इस धंधे में शामिल व्यक्तियों द्वारा किशोर बच्चों को नशा पान कराकर इस जाल में फंसाया गया और धीरे धीरे इस जाल में बड़ी संख्या में लोग आते गए और नशा के कारोबार का दायरा बढ़ता गया। नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार को रोकना आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकारों ने अनेक उपाय किए, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। कुछ नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग आदि मानव शरीर के लिए कम खतरनाक हैं और उसे सीमित मात्रा में लेने से अधिक हानि नहीं होती। इसीलिए इन पदार्थों की बिक्री सरकार भी कराती है और इसका लाइसेंस देती है। इससे सरकार को अच्छी आमदनी भी होती है, लेकिन शराब ने भी अनेक परिवारों को उजाड़ा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इससे आजीज महिलाओं ने कई बार गांव में शराबबंदी आंदोलन भी चलाया और सफलता भी हासिल की। लाइसेंस के अतिरिक्त गांव देहात में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने का धंधा होता है। इसी से कई बार जहरीली शराब के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा हेरोइन और कोकिंग जैसे पदार्थों की बिक्री और सेवन दोनों पर पूर्णतः रोक है, फिर भी इसका अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। इन नशीले पदार्थों के व्यापार संचालन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े माफिया लगे हुए हैं और उन्हें कई बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह यह धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। काफ़ी मुनाफा होने के कारण इस अवैध धंधे में अनेक सफेदपोश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं, जिनके बल पर यह कारोबार फल फूल रहा है और नई पीढ़ी को अपाहिज बनाने का कार्य चल रहा है। कम उम्र के लड़कों को इस कारोबार में आसानी से फंसाया जा सकता है और इसी का लाभ उठाकर इसके कारोबारी अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन इस धंधे पर रोक लगाना अब तक संभव नहीं हो सका है। इस पर रोक लगाने के लिए जनता में जागृति आवश्यक है।
1: देखी, नशा पर खोरी पर रोक लगावे खातिर जनता में जागृति आवश्यक बा। कितना बढ़िया जानकारी देलन ददन पांडे। ये जानकारी खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। अब आई मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बात कर लिया जा। तो काल है जौन मौसम के पूर्वानुमान बा, मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम 43 डिग्री के आसपास रही, जबकि न्यूनतम 28 डिग्री के आसपास रही। आ पिछला साल यही दिन के अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहे, और न्यूनतम

28 डिग्री तो देखी लगभग 6 डिग्री तापमान इस साल बढ़ल बा। आ हम यही के साथ हमने के आज के ई कार्यक्रम समाप्त हो गए। यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला आनंद लेने का। जी हां श्रोताओं, भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है सांझ गीत। सांझ गीत कार्यक्रम में श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भोजपुरी गीत। पहला भोजपुरी गीत हमने लिया है फिल्म में गंगा जैसन भाई हमार से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और कल्पना की। विनय विहारी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है राजेश गुप्ता ने।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं दिनेश लाल निरहुआ, इंदु सोनाली और सुप्रिया की आवाज़ों में फिल्म परिवार का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत। इसे शब्दों में पिरोया है विनय बिहारी ने और संगीत निर्देशन है धनंजय मिश्रा के।

श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म में परिवार का यह भोजपुरी गीत, जिसे गाया था दिनेश लाल, निरहुआ इंदु सोनाली और सुप्रिया ने, संगीत दिया था धनंजय मिश्रा ने और बोल थे विनय बिहारी के। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में रूठ गईली सैया हमार से, आवाज़ है आशा भोसले की, अनजान के शब्द हैं और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

0: के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीते। श्रोताओं, सांझ गीत कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे इससे संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: संदेश के बाद सांझ गीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव का यह बेहतरीन गीत। इस गीत को आवाज़ दी है उषा मंगेशकर ने। लक्ष्मण शाहबादी के गीत हैं और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव का यह गीत जिसे गाया था उषा मंगेशकर ने। गीत थे लक्ष्मण शाहबादी की और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। हेमलता की आवाज़ है, गीत और संगीत हैं रविंद्र जैन के।

तो श्रोताओं, फिल्म नदिया के पार के इसी बेहतरीन गीत के साथ है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। इससे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

0: श्रोताओं, जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष हीटवेव वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें कुल 33 बेड, 6 एसी और 18 कूलर की व्यवस्था रोहतास जिले में की गई है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिले में लू से ग्रसित मरीजों की संख्या शून्य है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS पैकेट और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नगर इकाइयों भभुआ, मोहनिया, कुदरा, हाटा, रामगढ़ में कुल 136 पियाव केंद्रों की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, सासाराम में हीट वेव का कहर आज भी जारी रहा। दक्षिण बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आज यानी रविवार को हीट वेव और लू का असर जारी रहा। तापमान में बढ़ोतरी दिखी। मौसम विभाग ने रोहतास समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। जिले में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावनाएं हैं। भीषण गर्मी का असर अब जनजीवन पर साफ दिखने लगा है। दोपहर होते ही शहर की सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं। बाजारों में लोगों की संख्या कम हो गई है, जबकि जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग गमछा, छाता और पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गर्मी का सबसे अधिक असर मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, ठेला संचालक और खेतों में काम करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। श्रोताओं, जिला प्रशासन कैमूर द्वारा जिले के सभी अभिभावकों एवं आमजनों से अपील की गई है कि वे अपनी 14 वर्ष की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर HPV का टीका अवश्य दिलवाएं। यह टीका पूर्णतः सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। HPV वैक्सीन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजनों से इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि प्रत्येक पात्र बच्ची तक इस सुरक्षा कवच का लाभ पहुंचाया जा सके। जिला प्रशासन और कैमूर स्वास्थ्य विभाग इस को लेकर समर्पित है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक संदेश और उसके बाद सुनेंगे एक बेहतरीन फिल्मी गीत।
1: चलने वाली
2: सुपर फास्ट
1: एक्सप्रेस के
2: यात्री मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण

0: करते जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक बेहतरीन फिल्म गीत। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। आवाजें अलका याग्निक और पंकज उदास की, समीर के शब्द हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ है आज का हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से ही संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: अपना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: दादी, कौन सा प्लांट है?
11: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
12: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
10: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
12: क्यों?
10: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
12: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
13: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल किया जा रहा।

0: है तैयार। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायियों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
1: मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी जब बिहार समृद्ध होगा।
0: मुख्यमंत्री ने उद्योग संघों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं समझी और उनके निदान का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न संकट से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
2: पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहाँ पे नियंत्रित रखा गया है, कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न भागों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के विचार, व्यवस्था और संपर्क माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। रोहतास में आयोजित महाअभियान में आज राज्य के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। श्री मिश्रा शेखपुरा जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर रहा है।
3: भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कड़ी में पूरे देश स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है और न सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो मंडल स्तर से जिले स्तर तक भी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बेहतरी के लिए उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है।
0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना में पार्टी की आज हुई बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है।

0: पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडेय ने बताया कि महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त उम्मीदवार दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों के लिए आज आईआईटी पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। पंजाब से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से अवगत कराया गया। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं से देश की विविध संस्कृति को समझने, आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद भी किया।
2: मैं आईआईटी खड़गपुर से 1986 में पास आउट किया था बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैं जॉब किया एलएनटी में एक साल, फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया, फिर मैं पब्लिक सेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बॉम्बे ज्वाइन किया, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस दिया, दिल्ली आया, यूपीएससी लिखा 90 में और फिर आपके सामने पुलिस में आ गया।
1: आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि पंजाब से आए छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
3: उन जगहों पर ले जाएंगे जिसके कारण बिहार ज्यादा जाता है, जैसे वैशाली है, बोध गया है, ये है नालंदा है, वैशाली का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को समझने के लिए और यहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता को समझने का भी पूरा प्रयास रहेगा।
1: कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मेहता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा संगम कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में लू चलने की संभावना जताई है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों

0: आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना समेत प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और इससे संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, भारी संख्या में कारतूस, 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एक युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मद्य निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले की बरबीघा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्तौल और 3 संदिग्ध मोबाइल बरामद की गई है। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरी सराय कबीरपुर पथ पर गश्ती के दौरान एक साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में सशस्त्र सीमा बल द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वाहिनी मुख्यालय बीरपुर से सीमा चौकी कटैया तक आयोजित रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों और जवानों के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में छात्र, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से की जाएगी लागू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, कदे फटे हैं पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
7: जिले का 46वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा से अवगत कराया। जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि मधेपुरा ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और अब विकास के गति को और तेज करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी और साहित्यकार डॉक्टर बी एन मधेपुरी की पुस्तक मधेपुरा जिला का इतिहास का वितरण किया गया। वहीं जिले के घैलाड़ क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले 100 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मधेपुरा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य 18,82,000 के मुकाबले करीब 10,72,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत कुमार मिश्र के अनुसार सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और वसुधा केंद्रों पर लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले के 12 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है, जहां गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मधेपुरा जिले में कैंसर पीड़ितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के IGIMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने मधेपुरा में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। IGIMS के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष प्रदेश में कैंसर के लगभग 78,000 मामले संस्थान में पहुंचे, जिनमें अकेले मधेपुरा जिले के करीब 2,750 मरीज शामिल थे। यह संख्या राज्य औसत से लगभग 700 अधिक बताई गई। डॉक्टर मंडल के अनुसार जिले का भूजल प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। पानी में नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा और रासायनिक प्रभाव के कारण पेट, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत और मलद्वार से जुड़े कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने की अपील भी की है। जिले में प्रशासनिक स्तर पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों में विशेष शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 38 चिन्हित शिविरों में आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और राशन कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शिविर का आयोजन कल तक होगा। मधेपुरा में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से फार्मर रजिस्ट्री अभियान चला रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत किसान अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री ID बनवा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुँचाना है। जिले में पासपोर्ट सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 26 मई तक विशेष मोबाइल वैन शिविर लगाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर के जरिए नागरिक अपने घर के नजदीक पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इच्छुक लोग पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर स्लॉट बुक कर आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी में आयोजित ऐसे शिविर में 165 आवेदनों का निष्पादन किया गया था। मधेपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिन लाभार्थियों

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं करा।

0: अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है उन्हें 30 मई तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए हैं और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है। जिले के सिंहेश्वर से मानिकपुर तक बनने वाली बाईपास सड़क को विभागीय स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल इसका DPR तैयार किया जा रहा है। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से मधेपुरा और सिंहेश्वर शहर में जाम की समस्या कम होगी तथा आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। 9 मई को मधेपुरा जिले के व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां आपसी सहमति के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 19 मई को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री शीला मंडल और प्रभारी सचिव राहुल कुमार ने सहयोग शिविर में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। यही आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम ईमेल आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद का। तो श्रोताओं, चलिए आप सबों के इस इंतजार की घड़ी को हम करते हैं खत्म और शुरू करते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

हम जानते हैं कि श्रोताओं, इस वक्त आप हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आपके इस इंतज़ार की घड़ी को अब हम करते हैं ख़त्म और आगाज़ करते हैं इसी खूबसूरत नगमे के साथ है। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं रवि भूषण आप सभी श्रोताओं का आज के अपने इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं यह बेहतरीन गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कुदरत का कानून। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं फुटानी चौक के नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित। भोपालबाड़ी उदयपुर राजस्थान से ललित चौरड़िया और स्नेहलता जैन। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी। यह हमारे नियमित श्रोता हैं और अक्सर अपनी फरमाइश की गीत सुनने के लिए हमें संदेश भेजते हैं, हमें ईमेल करते हैं। आप लोग हमेशा अपने गानों के लिए हमें ईमेल करते हैं, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, इसी गीत को पसंद किया है बिहार के सीतामढ़ी से नूर महल मेहसौल, जगह का नाम है मुसर्रत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज और कलेर बिहार से निखत परवीन और सदफ आरजू, आकार हाइट से बहादुरा नागपुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं, वैशाली से शैलेश गंवाड़कर, सुमित गंवाड़कर, कुमारी ध्वनि गंवाड़कर, परी प्रिंस एकांश गंवाड़कर। तो आप सबों की पसंद पर लीजिए पेश है फिल्म में कुदरत का कानून का यह खूबसूरत गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और साथियों की।

मुखड़ा चांद का टुकड़ा। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने यह गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म कुदरत का कानून से। आवाजें थी अलका याग्निक और साथियों की, समीर के गीत थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, ई मनपसंद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म आवारा का यह खूबसूरत गीत। इस गीत को एक वक्त था काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया था। इसे आवाज़ दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के शब्द हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और आरती कुमारी, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री इसी गीत को सुनना चाहते हैं। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह एकम, दमन और अभिजीत, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीता और गीता, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ओल्ड लिसनर्स से नर्स से राजनगर शारदा गुप्ता, रंका रानी कुशेश्वर, कांति गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा गुप्ता इलाहाबादी, सासाराम के नैका गांव से इस गीत को सुनना चाहते हैं, घनश्याम जायसवाल, श्याम जायसवाल, दीपक जायसवाल, आशीष जायसवाल, भोलू रवि कुमार। तो श्रोताओं, आप सबों की पसंद पर लीजिए पेश है यह खूबसूरत गीत जिसे गाया है मुकेश कुमार और लता मंगेशकर ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म आवारा का यह गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब हम सुनते हैं फिल्म राम बलराम का यह बेहतरीन गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी साहब के बोल हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं पारसमाड़ी रेडियो श्रोता संघ गंगा चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीको की बावड़ी से खुदा बख्श से खलीफा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राकेश राजेश ऋषिता, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम

कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा, नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार, निराला और चिलना झा। तो लीजिए सुनिए आप अपनी फरमाइश का यह बेहतरीन गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म में राम बलराम का यह गीत है, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। शब्द थे आनंद बख्शी साहब के और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे कुछ संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद में आप सभी श्रोताओं का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म दुनिया का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। हसरत जयपुरी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, और अन्य श्रोता हैं जो हमारे ईमेल पर संदेश भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ग्राम पोस्टे मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म दुनिया का यह गीत सुना। कार्यक्रम में आगे हमने लिया है फिल्म में आंखें का यह खूबसूरत गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की। इंदिवर के शब्द हैं और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार, गोविंदे पूरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशप अब्बासी, सिकंदरा राज से मुबीन अब्बासी।

कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना आंखें फिल्म का यह गीत। इसे गाया था कुमार सानू और आशा भोसले ने, इंदिवर के शब्द थे और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। ई मनपसंद कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आई मिलन की रात से, गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल ने। शब्द हैं समीर के और संगीत निर्देशन हैं आनंद मिलिंद के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़, दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

श्रोता मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आई मिलन की रात का यह गीत। ई मनपसंद कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म में नील कमल से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शाहिद लुधियानवी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है रवि का। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम विंद और वीरेंद्र पांडे। तो आप सबों की फरमाइश पर लीजिए पेश है फिल्म नीलकमल का यह गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

तो श्रोताओं, फिल्म में नीलकमल के इसी गीत के साथ फरमाइशी गानों का यह सिलसिला अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम ई मन पसंद का आज का यह गीतों भरा सफर आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम श्रोताओं की फरमाइशी नगमे लेकर फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर

0: करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित, अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi.
4: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं अब लीजिए अनंत बेहतरीन भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम है लोकधारा। पहला भोजपुरी लोकगीत हमने लिया है नीलेश्वर मिश्रा की आवाज़ में।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

लोकधारा कार्यक्रम का अगला और आखिरी भोजपुरी लोकगीत विंध्यवासिनी सिन्हा और सहेलियों की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, विंध्यवासिनी सिन्हा और सहेलियों के स्वर में अभी आपने सुना यह भोजपुरी लोकगीत है। इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है गज़लों का कार्यक्रम महफिल। पहला गज़ल आइए सुनते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। शब्द हैं गुलजार के और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: मेहदी हसन की आवाज में अब आइए सुनते हैं यह खूबसूरत गजल।

गुलाम अली द्वारा गाए इसी गज़ल के साथ है गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का यह रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको।
2: आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद उन गानों का जिन्हें हमने लिया है एल्बम से, और कार्यक्रम है रस रंग। कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम तुझे चुन लिया से। आवाज़ें हैं पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा के। सतीश त्रिपाठी के शब्द हैं और संगीत दिया है सतीश त्रिपाठी ने।

पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में अभी आपने सुना यह बेहतरीन एल्बम सॉन्ग जिसे हमने लिया था एल्बम तुझे चुन लिया से। सतीश त्रिपाठी के गीत और संगीत थे। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम आशिक तेरा से। आवाज़ है राज करमन की, नितेश तिवारी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है इस फहीम अहमद के।

0: हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग में अभी आपने सुना राज करमन की आवाज़ में आशिक तेरा का यह एल्बम गाना। शब्द थे नितेश तिवारी के और संगीत दिया था एस फहीम अहमद ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रसरंग कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एल्बम अच्छा सिला दिया का यह एल्बम सॉन्ग। आवाज शबनम मजीद के हैं, एसिन शादिक के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है सबीर अली के।

शबनम मजीद की आवाज़ में अभी आपने सुना यह एल्बम गाना। एसएम सादिक के शब्द थे और संगीत निर्देशन था सबीर अली के। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं रोज़ आती हो तुम मेरे ख्यालों में, इस एल्बम का यह खूबसूरत गाना। आवाज़ें हैं जावेद अली और सौमी शैलेश के, राज सागर के शब्द हैं और पवन मुरादाबादी ने इसे संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, अभी आपने जावेद अली और स्वामी शैलेश की आवाज़ों में सुना यह एल्बम गाना। रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी एल्बम सॉन्ग हमने लिया है ऐ दिल एल्बम से। दिव्यम शरण की आवाज़ है, संगीत है रामपाल के और बोल हैं दिव्यम शरण के।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम गाने के साथ है एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म तेजाब से। आवाज़ें हैं नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार के। जावेद अख्तर साहब के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म तेजाब से। आवाजें थी नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार के। जावेद अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हमराज से। आवाज़ महेंद्र कपूर की है, शब्द शाहिर लुधियानवी के हैं और संगीत दिया है रवि ने।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला। आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कामचोर से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द हैं इंदिवर के और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन के।

अब कार्यक्रम चित्रपट तराने का आखिरी गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत है रजिंदर किशन के, संगीत है चित्रगुप्त के और फिल्म का नाम है भाभी।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीते। सुबह 7:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

गीतमाला का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 9:10 पर, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी।

दिल्ली के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम जो आधारित होगा हिंदी एल्बम गानों पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी हम संक्षिप्त जानकारी दे रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 मई को जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जिले में लू यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। तो श्रोताओं, कल के मौसम पर अभी हम डाल रहे थे एक नज़र। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजेंगे। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एक्सप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
2: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
4: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत

0: केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET.